धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव पार्वती पते हर हर महादेव गंगा मैया की और विश्वनाथ की माता अन्नपूर्णा की उदीयमान सूर्य की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की हर हर महादेव।

आपके सामने हमारे भारत का झंडा गंगा जी का एक रत्न है, गंगा भागी रत्न, गंगा भागी रत्न निर्मल तो पहले करता खबर था समा भारत को हमारे पवित्र पावन भूमि का पुण्य सभी के विशिष्टता अवतारणी माना संसार भारत

0: जो नाम पर एक किताब का होने जो मुझे आता है तो वो भाई जो है
1: बात करने के लिए भारत राष्ट्रीय विजय की आज